इस तरीके से अगर नमाज दो रकत भूल गए तो आपका तवाफ मुकम्मल है। ये दो रकत जो है ये तवाफ के लिए फर्ज नहीं है, ये मुस्तहब है, तो आपका तवाफ दुरुस्त अमर भी दुरुस्त है। इसके बाद आप अपने दोनों कंधे ढांप लें, बल्कि जब आप दो रकत पढ़े तब आप अपने दोनों कंधे ढांप लें, क्योंकि तवाफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दाया कंधा इब्तिदाए करें सिर्फ तवाफ के लिए होती है। फिर मसनू तरीका है कि अगर आप जमजम का पानी पीना चाहें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तवाफ कर लेते तो जमजम का पानी पी लेते। आप सफेद डाल सकते बशर्त के जमीन पे ना गिरे, ताकि कोई दूसरे ना फिसले, किसी को तकलीफ ना हो आपकी वजह से। अगर आपको प्यास नहीं लगी वैसे भी आप सुन्नत की तिबाह पर पी सकते हैं। अगर आप नहीं पीना चाहते तब भी कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। तो आप रवाना हो जाए मसह की तरफ। तीसरा अमल हमने बयान किया था तवाफ उमरे के लिए, पहला एहराम, दूसरा तवाफ, तीसरा सही करना। सही होता सफा मरवा के दरमियान सात चक्कर लगाते हैं। जब आप सफा की तरफ जाएं तो आप यह पढ़ें, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم। जब आप ऊपर खड़े हो जाए तो तरफ किबले की तरफ कर लें और अपने दोनों हाथ उठाने जैसा कि आप दुआ में हाथ उठाते हैं इस तरीके से, और तीन मरतबा कहें अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाथ से हथेलियों से इशारा करना जैसा कि हम हजरत के लिए करते हैं तवाफ में, यह सुन्नत से साबित नहीं। सफा और मरवा में दोनों हाथ उठाने जैसे कि हम दुआ करते हैं, तीन मरतबा तकबीर पढ़ते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, फिर पढ़ते हैं। मुस्लिम तरीका यह है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहु मुल्क व लहु الحمد وهو على كل شيء قدير, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अंजज वअदहु ونصر عبدهُ وهزم الاحزاب وحده। इसके बाद आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, दोस्तों अहबाब के लिए, या मुसलमान भाइयों के लिए, मुसलमान उम्मत के लिए आप कोई भी दुआ करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर यही दुआ पढ़ें, ये जिक्र जो मैंने बयान किया है, फिर अपने लिए दुआ, फिर तीसरी मरतबा भी यही जिक्र, फिर दुआ, तीन मरतबा मसनून है। कुबरे की तरफ रुख होना सुन्नत है। अगर आप चलते चलते दुआ कर ले तब भी ठीक है रश में, लेकिन अगर आप किसी तरफ रुख करके दोनों हाथ उठाकर दुआ करें, भीड़ से ज्यादा दूर चल जाए तो जगह ली जाती है। अगर आप जल्दबाजी में करना चाहें तो फिर जगह नहीं लगी आपको। अगर आप जरा पीछे चले जाएं तो आप आसान से खड़े भी हो सकते हैं, मुकम्मल दुआ भी कर सकते हैं। फिर आप रवाना हो जाएं, मैंने कहा अब दो बिना बद अल्लाह भी कहा था, मैंने भूल गया, अब दो बिना बद अल्लाह भी ये पहले कहना है, फिर दोनों हाथ उठाने हैं, फिर तकबीर पढ़ने, फिर जिक्र करना है, फिर रवाना हो जाना है जज़ाकअल्लाह मरवा की तरफ। जब दो सब्ज लाइटों के दरमियान पहुंचे तो मर्दों के लिए मसनून है, सुन्नत है कि वो दौड़ लगाए। दौड़ लगाने का मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल तेजी से आप भागे और अपने सामने कुछ देखे नहीं। दौड़ का मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस जगह पर पहुंचे थे तो इस तरीके से दौड़ लगाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उनका एहराम जो वो लहरा रहा था, एहराम लहरा रहा था। अगर मुयस्सर हो, अगर भीड़ ज्यादा है तो आप दौड़ ना लगाएं। औरतों के लिए जायज नहीं कोई दौड़ लगाएं, जैसे मर्दों के लिए सुन्नत है, औरतों के लिए नहीं है। अगर आपके साथ बीवी बच्चे हैं या आप ग्रुप के सूरत में गए हैं और आपको यह डर है कि आप एक दूसरे से दूर ना हो जाए, भूल ना हो जाए, तो आप दौड़ ना लगाएं, इकट्ठे रहें, साथ रहें सब। सफा मरवा में कोई भी खास दुआ नहीं है, कोई भी खास जिक्र नहीं है जो आप के लिए आसान हो। कुरान मजीद की तिलावत या कोई भी जिक्र आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर वही बात जो इस छोटे किताबचे में लिखा है जिसमें हज उम्र का तरीका बयान किया गया है, पहले चक्कर या दूसरे चक्कर की दुआ, यह सुनने से साबित नहीं। अगरचे दुआएं ठीक हैं, लेकिन इस दुआ की तयन करना कि पहले चक्कर, दूसरे चक्कर, तीसरे चक्कर में आखिर तक, यह सुनने से साबित नहीं है। तो आपको

10 साल का लड़का है जो कहता है कि वो कैंसर का इलाज करता है, वो लोग उसके पास जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, बाज़ लोग गए हैं। ये सारे के सारे जिनों के जरिए सारे काम हो रहे हैं, खुफे तरीके से जो काम होता है, तो उसे बचना फर्ज है, हर मुसलमान पर फर्ज है, और ये मोमिन का ईमान का तकाजा है कि इन लोगों से बचे, इन लोगों के पास ना जाए। जान चली जाती है तौहीद पर, तो तौहीद पर जान को कुर्बान कर देना, यही आपके ईमान का तकाज़ा है जो आपके दिल में जिंदा है। क्योंकि अगर आप वहां पे जाते हैं और आपके दिल के अंदर जो ईमान है उसमें कोई खदश पड़ जाता है, उस पर कोई जख्म लग जाता है और वह आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाता है, तो फिर उसमें कोई खैर नहीं। आप उस सेहत को क्या करेंगे जो अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजरे, जो अल्लाह ताला की नाराजगी में गुजरे, उसमें मुझे फायदा ही क्या है। तो कामयाबी कामरानी इसी में है कि किसी शख्स पर अल्लाह ताला राजी हो जाए, और अल्लाह ताला कभी भी कुफ्र पर या बिदअत पर राजी नहीं होता, अल्लाह ताला राजी होता है तौहीद पर और सुन्नत पर। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौहीद और सुन्नत पर जिंदा रखे, और तौहीद और सुन्नत पर ही हमारी जान जाए।